0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

नेपाल पे क्यूआर में आबद हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

0: सिन्हा बादल आकाश आउँदो चट्याङ चुट्टुङ झारी मेरा जैठा दुख कहीं नहीं सारा त्यस्तै भरि
1: आधार स्वर्ग हम पानी छ आधार स्वर्ग मरने बाँच्ने

बात मारा ना मुझसे मानो। हेलो मनु मुझसे बात मारा ना। हेलो मनु भाई तो

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, एआई पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित रेडमी A7 मा 5200 mAh तथा रेडमी A7 प्रो मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: एसबीआई बैंक को एक घर तल पटी संपर्क मोबाइल नंबर 97454 33975 र 98145 84 01
1: एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनु होला।

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले रजियो।

0: QR संगे
1: नेपाल पे QR में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट IPS ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे QR में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे QR नेपाल के अपने QR

संगे नेपाल पेट्रीबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

0185 38 2 60 98 5 80 30 305 98 4 80 91 0 37 वेबसाइट www.collegeofallied.com गुणस्तरीय शिक्षा व्यवहारिक सिकाई र उज्जवल भविष्य को भरपर्दो आधार।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी